0: दशमपहा अनुतुनाय दशमहाता लखंड रेडियो आईटीएन सभे श्रीलंकीय हंड
1: विलाव पासवर्ड एकाई
2: विलाव ओपवेत किन आवे
3: लोकराय ये पेरलिकरण एनएलबी मेगा पाव तेवंत मेगा सुपर टैग द अमतरव रुपियाल कोटी एक पाव सुपर टैग सह ग्रैंड सुपर टैग द सुपर रिमोट रोटिया एनएलबी मेगा पाव ओबत अदम मिलदी।

यदा स्वाधीन रूपवाहिनी मादिजाले लंकावट तिलिनकल आदरणीय गीहने हिमिकरुवाटाई लखन गीरश्मी समग गायनट अपि आराधना करन्नी एलिमहान प्रसंग वेदिकावत गृहस्थ प्रसंग वेदिकावत एक लेसिन जयगत आदरणीय गीहने सबे हिमिकरुवा ओहुई एनिसा मेन लखन गीरश्मी समगिन गायनट अपि आराधना करमु शिल्पी इंदिक लियनगे.